0: 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
1: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
2: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
3: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
4: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
5: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001234774 core.org.uk.
2: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 7.

0: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए। फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org। इंस्पायर एफएम आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: I have

या गैर मुस्लिमों के ज़ेरे तसल्लुत होने की वजह से कुछ मुश्किलात का शिकार थे, तो कुरान अज़ीज़ की रोशनी में हम कोशिश करेंगे इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की कि किस तरह उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई। ये तो एक तारीखी हकीकत है और हम सब जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त दुनिया किस हाल पर मौजूद थी और ज़मीन पर बसने वाले इंसान किस हालत में ज़िंदा थे और कैसे कैसे मसायब व आलाम का शिकार थे। अगर इन सारे सवालों का जवाब एक लफ्ज़ में दिया जाए तो वो ये है कि जुल्म था और नाइंसाफ़ी थी इस ज़मीन के ऊपर। यानी बुनियादी तौर पर इस माशरे में कमज़ोर पर जुल्म और उसके साथ नाइंसाफ़ी एक मरकज़ी उनसर था जो उस माशरे में रासिख शुदा तमाम बुराइयों और तमाम नाहमवारियों का सबब था। और यही जुल्म कबाइल के अंदर नस्ल दर नस्ल जारी जो लड़ाइयाँ थीं, अगर गौर किया जाए तो उनका बुनियादी मुहर्रिक भी था। और बदकिस्मती से यही जुल्म उस मुआशरे के लिए वजह इफ्तखार भी था और उनके यहाँ इस जुल्म को कारहाए नुमाया और बहादुरी के नाम से किस्सा कहानियों और मुख्तलिफ किस्म की पोइट्री के अंदर शायरी के अंदर मुख्तलिफ शक्लें देकर अगली नस्लों तक महफूज करके इसको मुंतकिल किया जाता था। और फिर मुआशरे के अफराद इसमें बराबर के हिस्सेदार थे। ये जुल्म बेटियों को जिंदा दरगोर करने की शक्ल में भी मौजूद था। ये जुल्म मुआशरे के जो कमज़ोर लोग थे अगर उनसे कोई गलती हो गई, कोताही हो गई, जुर्म हो गया तो उनको कड़ी सजाएं देते और अगर मुआशरे के जो इशराफिया थी, मुआशरे के जो बाअसर लोग थे उनके जराम से चश्मपोशी की शक्ल में भी ये जुर्म जो है वो मौजूद था। और इसी तरह ये जुल्म, ये जबर जो मुआशरे के अंदर उस ज़माने में स्लेवरी थी, ग़ुलाम होते उन्हें और जो लोग उनके सबॉर्डिनेट होते, मातात होते, उनके साथ गैर इंसानी सलूक की शक्ल में भी मौजूद था। और ये जुल्म जब हम उस ज़माना जाहिलियत की तारीख को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इक्तदार की अवस में कत्लेआम और जो महकूम लोग होते उनके साथ भयानक और नाकाबले बर्दाश्त सलूक और ईज़ारसानियों की शक्ल में भी मौजूद था। जुल्म के ये सारे सिलसिले बड़ी शदो मत के साथ जारी व सारी थे कि आका इनामदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक हुई। और फिर जो कुफार और मुशरिकीन थे उनकी तरफ से मजालम का ये सिलसिला बढ़ता हुआ आपकी दावत पर लब्बैक कहकर इस्लाम कबूल करने वाले नियत्ते मुसलमानों तक पहुंच गया, जिसके नतीजे में ऐद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान इस्लाम कबूल करने वालों पर मुख्तलिफ किस्म के मजालम के पहाड़ तोड़े गए

0: परेशानी पैदा करेगा, तो ये घर से शुरू करना होता है। कभी कभी जब हम घर से शुरू करते हैं तो पता चलता है जी ये और मुश्किल हो गया है, घर वालों के लिए भी मुश्किल हो गया। मेहरबान को लेते हैं ऑन एयर, कौन है हमारे साथ, पहले करते हैं उनसे बात। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, सोई हुई आवाज़ के जागी हुई आवाज़।
1: बस क्या कहूँ मैं, सोई हुई भी और जागी हुई भी, दोनों
0: बीच
1: भी
0: में,
1: आवाज
0: बीच में है
1: जी।
0: आधी सोई आधी जागी, जैसे हम लोगों की जिंदगी चल रही है, जैसे हमारे हालात चल रहे हैं, जैसे हमारे रिश्ते चल रहे हैं, आधे सोए आधे जागे। हुक्म।
1: लेकिन आप तो पूरे जागे में ना आजादी।
0: हम गोली
1: तो
0: खा के जागे हुए हैं जी।
1: सही बात है, आप
0: गोली
1: तो,
0: खा के सोते हैं, हम गोली खा के जागते हैं
1: जी। माशाल्लाह, आप कहते हैं ना आपने जो जिंदगी गुजारी है वो जैसे होश में, वाकई आप इतना नोटिस करते हैं हर चीज, तो वही है कि इंसान जब इस तरह जिंदगी गुजारता है तो वो तो फिर बात अलग ही होती है। वो 40 में भी 80 से ज्यादा पता चल जाता है।
0: आप क्योंकि तो, हमारे ना हमारे ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी हैं, तो ब्रॉडकास्ट में जब हम मैसेज भेजते हैं ना सबको मिलता है, तो आपकी जो अभी तस्वीर आ रही है ना ये व्हाट्सएप के ऊपर, ये माई हज्जन इसमें लग रही हैं आप। तो ये कब हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमको भी, साथ शेयर कीजिए।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं उम्रे पर थी और इतना खूबसूरत, मतलब रहाना मेरा ये उम्रा, मुझे बहुत मेरा ख्वाहिश थी मेरी उम्रा करने की, और ये पूरी मेरा जो था इतना पूरा इत्मीनान रहा, इतनी मुझे खुशी हुई। और माशाल्लाह से अब जितनी भी जगहें घूम लो, मैंने सारी बहुत सारी जगहें देखी हैं, लेकिन इस जगह की जो बात है ना वो बिल्कुल ही अलग थी। और जो एक एक्सपीरियंस, माशाल्लाह मेरे तमाम भाई भी थे मेरे साथ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, तमाम आगे पीछे साइड में सब मेरे भाई थे, तो उन्होंने मुझे उम्रा कराया। बहुत अच्छा लगा, इतना मुझे सुकून महसूस हुआ ना। बस यही दुआ है कि जो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमें दोबारा तौफीक दे के हम यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा।
0: ऐसी कौन सी एक दो बातें नोट की जो आपको थोड़ी सी हैरत हुई?
1: आजाद जी, पता नहीं वहां आकर ना ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक तो अजीब सा एक, आपको स्पिरिचुअली आप बहुत हाई एक फील करते हैं और बस कुछ अजीब आपको फीलिंग आती है, और हर चीज ऐसा लगता है कि जो दुनिया की आपको कोई भी परेशानी है या आप किसी भी हालात से गुजर रहे हैं, वहां आकर सिर्फ आप रुक जाते हैं और आपका जो एक जो फोकस होता है ना वो सिर्फ वही होता है, रब होता है आपका, आपका फोकस। और मतलब मैं तो सीरियसली जब बात भी करती हूँ तो मुझसे बात नहीं की जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर कोई वहां पर जाए और उस चीज को महसूस करे वाकई वो
0: जरूर।
1: जी तो बहुत, मतलब माशाल्लाह बहुत
0: हमारे सारे आधे से ज्यादा लिसनर जो हैं वो जा चुके हैं और हमारे साथ रूहानी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी जरूर जाएंगे और हमारा सलाम पहुंचा दिया होगा आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका सलाम पहुंचा दिया सबके लिए। मैंने बहुत दुआएं की
0: हमारे रेडियो आजाद के लिए, मैंने के लिए।
1: जी रेडियो आजाद के लिसनर्स के लिए तमाम, और रेडियो आजाद के लिए सबके लिए, आयशा जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, हमारी तमाम टीम के लिए,
0: टीम के लिए सब आपने लोगों क्या, के लिए। क्या दुआ की है कि अल्लाह हम लोगों को अकल की तौफीक अता फरमाए?
1: बस यही कि अल्लाह मियां हम लोगों को सबको अच्छा रखे, सही रखे,
0: इसी तरह प्यार और मोहब्बत से जोड़ के रखे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने दुआ की।
0: आपको मुश्किल में डाला था तो फिर निकाला भी हमने जी।
1: बिल्कुल, और रजा जी अजीब बात है, देखें जब वहां पर थे तो कोई भी हमारी तबीयत कुछ खराब नहीं हुई, सब माशाल्लाह से इतना अच्छा हुआ। और यहाँ आकर जैसे हम आए ना जब पाकिस्तान, तब सबको महसूस हुआ कि तबीयत खराब जैसे हुई, वहां पर तो कोई भी चीज ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, सिर्फ आपका जो एक फोकस था वो वही था आपके, मतलब
0: जहन को जब आप एक टास्क देते हैं ना, और फिर आप जब उधर कोई रूहानी किस्म का एक्सपीरियंस भी तलाश कर रहे होते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं, आपका जो फोकस होता है वो इबादत पे होता है, कुछ चीज़ें इधर उधर देखने पे होता है, चीज़ों को महसूस करने पे होता है, तो जिस्म का जो दर्द या तकलीफ़ या परेशानी होती है ना वो तब उसको एहसास होता है जब वो वक्त गुजर जाता है उसके ऊपर से। तो फिर जब आप वापस आते हैं और आते जाते हुए भी और दूसरा इसमें कमाल ये भी है कि आते जाते हुए बहुत सारे लोग आपके

0: इर्द गिर्द ट्रैवल कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, जहाज़ में भी होते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी होते हैं, फिर वहाँ जब आप जाते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होती हैं वो भी फिर आदमी साथ साथ पकड़ लेता है, तो ये नॉर्मल है
1: जी। लेकिन ये आपने बात बिल्कुल सही की। आप यकीन करें, जब उमरा कर रहे थे हम, सही कर रहे थे, और उसके बाद भी फिर हम गए वहां पर, तो हमारे जिस्मानी तौर पे हमें बिल्कुल थकन महसूस नहीं हुई। और हम जैसे ही आते थे ना कमरे में, तो फिर ऐसा लगता था जिस्म जो है ना चूर चूर टूट रहा है बिल्कुल। तो उस वक्त बिल्कुल महसूस नहीं होता था, थकन नहीं महसूस होती थी आपको।
0: इसीलिए जहन को टास्क देना बहुत जरूरी है, फोकस करना और जिस मकसद के लिए आप निकले हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें, ये जो बॉडी है ना, इट हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन, कहते हैं दूसरा जो ब्रेन होता है ना वो गट में होता है, बिल्कुल इसी तरह बॉडी का भी अपना एक माइंड होता है। और ये बात मुझे बाद में एक्सपीरियंस से भी पता चलती है, एक ज़माने में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, एलर्जी, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्हीं दिनों में मुझे पता चला मेरे किसी बहुत ही अजीज़ की डेथ हो गई। तो वो डेथ का जब मैंने सुना तो उसके बाद जो यू नो प्रोसेस करते करते अगले 3-4 दिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही चीज़, वो जो डेथ था, डेथ थी और उससे रिलेटेड जो इमोशंस थे वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो 4-5 दिन के बाद मुझे ख्याल आया मेरी एलर्जीज वगैरह ख़त्म हो गई सारी क्योंकि बॉडी ने, दिमाग ने फोकस करके मुझे दुख की तरफ लगा दिया और वो जो बीमारी और जो मसाइल चल रहे थे जो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहे थे वो खुद ब खुद ही ठीक हो गया क्योंकि ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन बींग्स जो है ना वो बड़े कमाल किस्म की चीज़ हैं, और ये प्लेसिबो इफेक्ट चीज़ों का, और इंसान बहुत कम अपने बारे में जानता है, और जैसे जैसे जानता जाता है उसको फिर समझ आएगी, लेकिन वो रोटी कपड़ा मकान और फिर जज्बात और इन मसाइल से ही उसको नहीं निकलने देते, या वो खुद ही नहीं निकल पाता बेचारा क्योंकि वो दूसरों को इसी तरह होता हुआ करता हुआ देखता है, तो वो समझता है शायद यही ज़िंदगी है, यही बंदगी है, तो इसी चक्कर में फिर वो बेचारा अपने आप को जान नहीं पाता।
1: वाकई ये महसूस वाकई हुआ, मतलब इतना अमेजिंग कि आपको महसूस ही नहीं होता कुछ।
0: हाँ जी।
1: आपका तबीयत खराब नहीं होती, आप इतना माइंड आपका उस तरफ होता है फोकस कि आपका आपका मतलब पूरी बॉडी आपकी उस तरफ नहीं होती, बीमार नहीं होती आपकी
0: बॉडी। फिर आपने बचपन से कुछ चीजें सुनी होती हैं, कुछ बातें सुनी होती हैं, कुछ आपकी ख्वाहिशात होती है जब हम जाएंगे तो वहां ये देखेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, तो ब्रेन बहुत बिजी होता है।
1: और आजादी, एक चीज मैंने और महसूस की वहां पर कि वहां पर ना वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा था, ये नहीं पता चल रहा था कि ये दिन है ये रात है। मतलब मैं ऑनेस्टली वहां पर 9 डेज जो थे वो ऐसे गुजरे जैसे 9 मिनट, सीरियसली,
0: क्योंकि बिजी बहुत थे ना, आना था, खाना था, खाना था, फिर जाना था, फिर इबादत करनी थी, उसमें थकना था, फिर चूर होके सोना था, फिर सुबह उठ के वही चीज़ करनी थी, तो इस चीज़ के बीच में जो आपका क्लॉक होता है ना रेगुलर, जब आप घर में काम करते हैं, दिन की आपकी रूटीन होती है, उसमें बहुत सारे आपने रिचुअल्स करने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जब आप उस तरह दिन को देख रहे होते हैं तो दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा होता क्योंकि एक रूटीन को आपने बार बार करना होता है। वहाँ एक नई चीज़ होती है और वो कुछ काम होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपने वहाँ के पूरे करने होते हैं, और उस हिसाब से फिर आपका फोकस होता है, थकावट भी उसी हिसाब से होती है, नई जगह होती है, नया मुकाम होता है, नए जज्बात होते हैं, तो इस चक्कर में फिर आप थोड़ा सा ध्यान जो है वो आपका बट जाता है।
1: लेकिन आजादी, इतने सारे लोग रात दिन वहाँ पर तवाफ एक सेकेंड नहीं रुकता।
0: जी हाँ,
1: एक सेकेंड, इतने सारे लोग।
0: जब आपने, रब ने जब कोई चीज़ किसी के ज़िम्मे लगा दी हो और फिर उसके काम करने वाले ऐसे कमाल इंसान हो, और जब किसी के दिल को, किसी की मोहब्बत, किसी की अकीदत, किसी की चाह जो है जब दिल को और इंसान को पकड़ लेती है, तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना जो दुनिया में होता रहता है ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। हर आदमी वक्त निकाल के उसके अंदर की जो फीलिंग है, जो उसके इनर कॉलिंग है, अंदर से तो सबको पता है, रूह को तो सब कुछ पता है, ये वादा उला में हर बात रूह ने तो मानी है और गवाही दी है, तो उसको तो पता है फिर उसने किस तरफ जाना है, और वहाँ पर जब उसको वो कोई चीज़ उसको इतनी अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ रूहानी तौर पे, तो वो तो फिर उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। और फिर जो लोग आपने देखा होगा, जो भी कितने ही लोग होंगे जो सोचेंगे मैं ज़िंदगी में शायद एक उमरा करूं या एक हज करूं, वो फिर पता नहीं इतनी गर्मी में भी जाते हैं, वो आके कहते भी हैं बड़ा मुश्किल, बड़ी तकलीफ़ थी, बड़ा कोई ये था वो था, वो फिर तैयार हो जाते हैं।
1: राइट,
0: ये बस ये चीज़ ही ऐसी है, जो चीज़ भी नेचुरल होती है ना, सिर्फ वही चीज़, जो काम भी नेचुरल होता है, वही काम आप तकलीफ़ हो उसमें, परेशानी हो, जितनी भी उसमें कठिन रहा हो, आप बार बार वो काम करना चाहते हैं बिकॉज वो एक सच्चा ट्रूथ का काम है, आपका रूह उसकी तरफ खींचता है। ये मैंने नोट किया है ज़िंदगी में।
1: जी,
0: और बाकियों को बड़ा
1: और
0: मुश्किल लगता है, लेकिन वो आपको नहीं मुश्किल लगता। और लोग सोचते हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रही हैं, कर तो लिया है, लेकिन वो फिर बार बार जाना चाहते हैं, वो बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं उस चीज़ को। तो बस ये होता है जब ये चीज़ की सच्चे होने की और आपकी जो रूह की जो आवाज़ है उसकी हकीकत जो है बयान करती है तमाम चीज़ें।
1: जी जी बिल्कुल सही। और बस मैं जो है, और आप कैसे हैं
0: अल्लाह
1: सब आपके
0: करम,
1: लिसनर्स के
0: लिसनर्स बड़े
1: चलने
0: अच्छे हैं।
1: की?
0: हमने बीच में से शो वगैरह कम किए और उसके बाद अभी खैर हम बहुत सारे को होस्ट उस्मान जी और सजीला जी और बहुत सारे मेहरबान आपकी जो है वो स्टार्ट जो शुरू में आपकी कमी है वो पूरी करते रहते हैं और हम शो को लेके रवा दवा हैं। कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता।
1: आपने वैसे जो अभी पूरा बयान किया है ना
0: जी
1: उम्रा, आपने आपने किया है उम्रा, आप
0: नहीं
1: कैसे बता रहे हैं सब,
0: कई
1: तो आपको
0: चीज़ें,
1: कैसे?
0: कई चीज़ें जो होती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो आप करें तो आपको पता हो, बस आपको पता होती है बताने
1: लेकिन
0: वाला।
1: आप एग्जैक्टली वही बता रहे हैं जैसे मैंने महसूस किया है, वहां के जिस्म नहीं थकता, रूह आपकी हाई होती है, फिर आप हाउ डू यू नो,
0: बिकॉज
1: कैसे पता आपको?
0: हर चीज़ का लॉजिकल एक आंसर होता है ना, हर चीज़ का मकसद है कोई, हर चीज़ खामखा कोई भी चीज़ नहीं होती। सो जो कुछ भी होता है जब आप उसको जांचने लगते हैं, जब आप एक मकसद अपनी ज़िंदगी का बनाते हैं कि मुझको जानना है, मुझको चीज़ों की हकीकत जाननी है, मुझको जिस्म की हकीकत जाननी है, मुझको रूह की हकीकत जाननी है, मुझको एक्सपीरियंस की हकीकत जाननी है, मुझको इंसानों की हकीकत जाननी है, मुझको अपनी कमज़ोरियाँ अपनी स्ट्रेंथ्स और जो अपनी लाचारियाँ हैं और जो अपनी कमालात हैं इनको जानने की कोशिश करनी है, बाकी लोगों पर ध्यान देना है, ये क्यों हमें ये चीज़ें होती हैं, ये हमारे साथ ये चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, एहसास क्या चीज़ है, इन चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों को अपनी बेहतरी के लिए आसानी के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इनको दूसरों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप गिरा खोल देते हैं, जब आप इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने जहन को जब खोल देते हैं, जब ये किसी किस्म की ज़ातियात से बाहर निकल आता है, ये जज्बात से बाहर निकल आता है बीमार किस्म की जज्बातियत से, तो फिर आप किसी के एक्सपीरियंस को भी फील कर सकते हैं, आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और जब आप कनेक्ट किसी इंसान के साथ कर सकते हैं तो जो कुछ उन पे गुजरती है या गुजरी है उसको फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म आप ये समझें कि आप करके तो उसको आप अल्फाज में बयान कर सकते हैं
1: जी,
0: ऐसे
1: बिल्कुल
0: करके।
1: सही,
0: और जब हम करके आएंगे,
1: ब्यूटीफुल।
0: जैसे अभी हम यूरोप गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी, बड़ा मज़ा आया लोगों को। फिर इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा तो जब हम जाएंगे तो फिर जो कुछ भी वहाँ पे
1: इंशाल्लाह
0: होता है तो फिर उसको हो सकता है मुमताज़ मुफ्ती की तरह जाएं और कुछ भी ना हो, और वो जो पत्थर मारते रहते हैं ना वो जो गीटियाँ मारते हैं वो आगे से वापस भी मार सकता है हमको कि भाई तुम भी इनके साथ, तुम भी वापस मिलने मिले हो, आप भी गीटियाँ मारने के चक्कर सारे पूठे काम करके, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं,
1: नहीं
0: बहुत सारा कुछ होता है ज़िंदगी में। बट उम्मीद करते हैं जब वो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस होगा तो उसको भी कोई बयान कर पाएंगे।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस और क्या कहते हैं, आपके क्लिप्स वगैरह भी बहुत अच्छे आपके आते रहते हैं, उससे हम
0: हाँ जी,
1: कनेक्ट करते हैं।
0: नई सेटिंग में, नई लाइटिंग में, नए कलर में, नए बैकग्राउंड में हमने जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहुंचा आपको?
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा, बहुत बहुत अच्छा। उससे जो है वो नई नई, हर उसमें एक मैसेज होता है और एक नई बात होती है उसमें, जो है ना सीखने के लिए बहुत कुछ होता है
0: ये। आप लोग जब
1: आपके
0: उसमें ये सीख रहे
1: माशाल्लाह।
0: होते हैं, मैं ये सीख रहा होता हूँ कि जब इतनी ज्यादा लाइट्स आपकी आंखों पे पड़ रही हो तो आपने अपनी आंखों को क्यों, उसको ऐसे जो बंद क्यों नहीं करना, स्क्विंट क्यों नहीं ये कैसे आपने बेहतर से बेहतर देनी है कि आप आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, अगले बंदे को की तरफ देख रहे हैं और आप उसी से बात कर रहे हैं। हम अभी इन चीजों के बीच में, हमारी तगोदो इन चीजों तक पहुंची।
1: अरे कैमरे तो अब आप तो हॉलीवुड कर लिया हमने, अब आप कैमरे तो खेलते होंगे, आपका फ्रेंड होगा।
0: कैमरा जो है ना वो एक्टिंग में जो कैमरा है उसमें और लोग भी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन की वजह से आपको शर्म नहीं आती लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं ना सामने दीवार की तरफ देख के और कैमरे की तरफ देख के आप बात कर रहे हैं, और एक्टिंग में आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना होता, ठीक है, ये
1: अच्छा?
0: हाँ जी, आप एक्टिंग में आपने देखा होगा फिल्म वाले अगर एक्टर आपकी तरफ देखने लग जाए तो आप फिल्म कैसे होगी, वो उसने हमेशा आपने देखा होगा एक्टर उसको अवॉइड करता है, वो कभी भी कैमरे को नहीं देखना होता, यहाँ सिर्फ कैमरे को देखना होता है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो ऑडियंस को पता लगेगा आप उनसे बात कर रहे हैं।
1: लेकिन आप जो है ना, जैसे हम भी थोड़ी बहुत फेसबुक लाइव की थी, लेकिन आप इतना अच्छा देखते हैं कैमरे को, जैसे लगता है कि आप हमें देख रहे हैं, हम लोग इधर उधर देख लेते हैं,
0: वो नेचुरल
1: वो
0: करने का ना,
1: एग्जैक्ट
0: वो भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जहन को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बार बार कि इस बात को करते हुए ध्यान देना है, क्योंकि अगला बंदा डिस्कनेक्टेड फील करता है। अगर आप इधर उधर थोड़ी देर के लिए एक आध चीज़ रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी की तरफ देख कर बात नहीं कर रहे होंगे ना, उसको ये नहीं लगता कि रूह में झांक के बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं लगता कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, वो समझ रहे ऐसे ही किसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो लोग अक्सर कहते हैं ना, आप मुझसे ही कह रहे हैं, आपको कैसे पता मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप फील कराएं इस चीज़ को अगले बंदे को कि मैं भी, आप भी, हम भी, ये सब हमारी ज़िंदगी की बातें हैं, ये आपके साथ भी रहो, आपके भी, आप भी कहीं पैदा होते हैं, आपके भी माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, स्कूलिंग होती है, चैलेंजेस होते हैं, आपकी भी ख्वाहिशात होती हैं, आपकी भी ख्वाब टूटते हैं, और आपके साथ भी स्ट्रगल्स होती हैं, आपके भी चैलेंजेस होते हैं, फिर आपकी भी विक्ट्रीज़ होती हैं, और फिर ये सारी जिंदगी, और फिर आप भी जिंदा हुए, आप भी मरेंगे, आप भी बीमार होते हैं, आपको भी तकलीफ़ होती है, आपको भी परेशानी होती है, और यू नो रोज़ की एक ज़िंदगी की स्ट्रगल है, वो तमाम लोगों के साथ होती है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ये सब नहीं होता। तो इसीलिए जो बातें बताई और की जाती हैं वो हमारी बातें, हमारे से रिलेटेड हैं, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारे मकसद से रिलेटेड।
1: तो अजय जी, जब आपने पहले वो किया था अपना, जो आपने फिल्म की थी, तो उसमें आप बहुत सारे और भी लोग होंगे ना जब आप एक्ट कर रहे होंगे, तो जब आपने पहला सीन किया और फिर आपने दूसरा सीन किया, तो उसमें आपका क्या डिफरेंस था? मतलब पहले सीन में ऑफकोर्स थोड़ा सा आपको हुआ होगा ना, इतने लोगों के सामने एक्टिंग करना, तो वो कैसा, मतलब घबराहट तो हुई होगी, लेकिन फिर आपने इतना कैसे,
0: वो कैसे किया का, तो देखें जो प्रेपरेशन होती है ना, जो मेरा उसमें रोल था, जैसे लॉयर का रोल था, अटर्नी का रोल था, मैं अपनी बेटी से मुझको बात करनी थी खाने के टेबल पे, अपनी बेगम से बात करनी थी, और उसमें इंटरेस्ट शो भी करना था, नहीं भी करना था, लाइट भी कॉन्वर्सेशन को रखना था, तो मेरा ज़िंदगी का वो पहला कैमरे के आगे सीन था, ठीक है, और वो लोग समझ रहे थे, और उसके बाद मेरे सामने जेरल्डीन थी जो इतनी फिल्में कर चुकी हैं, मेरे सामने पूर्वी जोशी थी जो कि 15-20 साल से, वो उनकी पूरी फैमिली फिल्मों में काम करती है, वो स्टेज प्लेस पे काम करती हैं, वो कपिल शर्मा के साथ कितने सालों तक शो करती रही, इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो भी, और साथ हमारी जो बेटी साहिबा थी जेरल्डीन, वो भी बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस है। तो अब हम वो उनको जो स्क्रीन सबसे, इनसे पहले मैं सिलेक्ट हुआ था अपने रोल के लिए, ये बाद में आए थे, और जेरल्डीन तो बिल्कुल आखिरी दिनों में आई थी। सो उसमें अब वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब तो आएंगे तो छा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो मेरे घर में बैठे हुए दो सेल्फ टेप देखी थी सिर्फ, तो सेल्फ टेप में अपने घर में बैठकर किसी से वॉइस रिकॉर्ड कराकर वो वॉइस के बाद मेरे एक्शन देना या रिएक्शन मेरा करना और कैमरे में रिकॉर्ड करना तो बड़ा आसान होता है, आप घर की कंफर्ट में बैठे हैं, या अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने दो सीन रिकॉर्ड करके भेजे, तो वो इनको इतने अच्छे लगे, उनको लगा कि भाई इनके सामने तो एक्टर्स आएंगे तो ये तो बड़ा कमाल करेंगे। अब मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे तो पता है ना लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या जानता हूँ और मुझे क्या पता है वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि रोल तो मैंने प्ले करना है और एक्टिंग तो मैंने करनी है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि पहले 5-6 दिन मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं बस होटल में अपना स्विमिंग वगैरह 16वीं मंजिल पर करूँगा और उसके बाद मैं कमरे में आ जाऊंगा, और चार पाँच दिन मुझे मेरा कोई सीन ही नहीं है। तो अब वो जेरल्डीन भी जा रही है अपने सीन करने और उसकी माँ भी जा रही है अपने सीन करने और मैं जा ही नहीं रहा, तो मैंने एक डायरेक्टर को बोला कि भाई, क्लियर बोला मैंने कि मेरा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये इतनी बड़ी फिल्म है, तो मुझे कम अज़ कम एक दफ़ा शूटिंग होते हुए तो दिखा दो कि शूटिंग कैसे करनी है, ठीक है, कि एक्टिंग होती कैसे है कैमरे के आगे, तो करते कैसे हैं, टेक्स कैसे होते हैं, रीटेक्स कैसे होती हैं, कैमरा रिहर्सल कैसे होती है, और स्पेशली, और जो हमने एक आध दफ़ा देखा हुआ था वो टोटली और पाकिस्तान की बात और होती है, यहाँ पर कैसे करेंगे, आपका माइंड जानना चाहता है ना, तो डिस्टर्ब रहता है, वरना उसको लगता है कि यार ये मैं कैसे करूँगा इतनी बड़ी फिल्म में, मेन मेरा लीड रोल है फिल्म का और मेरे इर्द गिर्द सारी फिल्म और वो बेटी और मेरे इर्द गिर्द रिलेशनशिप के इर्द गिर्द सारी फिल्म घूम रही है, तो मैं कैसे करूँगा। तो खैर उन्होंने पहले तो कहते हैं कि ये अलाउड नहीं है, फिर उनको मैंने जब ज़बरदस्ती कहा, मैंने कहा जी मुझको एक दिन पहले दिखा दें कम से कम क्या होता है, फिर मैं उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि वो एक्टर को बुलाने का ये नहीं होता कि वो आए गाड़ी में और वो सीन देख के चला जाएगा, उसके लिए फिर वो ट्रेलर आपको देते हैं, फिर ट्रेलर मेकअप और ये और वो बड़ा सब कुछ होता है, तो इसलिए उनको बड़ी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पूरे करने होते हैं एक्टर के लिए। खैर तो वो फिर मैं जब गया वहाँ पर, तो फिर मैंने वो एक सीन है जिसमें वो कपड़े ख़रीद रही होती है जेरल्डीन के लिए, वो जो बड़ी सी शर्ट्स को खरीद के दे देती है और वो स्किम्पी से कपड़े खरीदने के चक्कर में होती है, तो वो वाला सीन फिर मैंने पीछे बैठ के देखा, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे होती है एक्टिंग, हाँ ये तो मैं कर लूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगले दिन उन्होंने जब मुझे बुलाया तो बजाय इसके अब हम तीन एक्टर, मैं आपको बताऊं फिल्म में काम करना ना कोई आसान काम नहीं है, खाला जी का बेड़ा नहीं है, जो लोग इसीलिए स्टन हो जाते हैं या घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा या बिल्कुल शेल शॉक में, बड़े बड़े एक्टर्स शुरू में आते हैं तो शेल शॉक हो जाते हैं, उसका रीज़न है। अब उनको क्योंकि वो हफ्ते से उनके साथ वो एक्टिंग कर रही थी लेडीज़, तो उनको वो प्रैक्टिस उनकी होगी तो वो कम्फर्टेबल हो गए। मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही उस दिन मुझे पहली दफ़ा पता चला, आई थॉट कि दो कैमराज होंगे, एक्शन रिएक्शन होगा, वो बोलेंगी जब तो मैं उस वक्त रिएक्शन दे दूंगा तो कैमरा पकड़ लेगा उसको। तो मुझे तो बाद में पता चला कि भाई पहले तो एक कैमरा सिर्फ होगा, ठीक है, एक कैमरा पहले मेरे ऊपर होगा, मैं अपने सारे डायलॉग बोलूंगा, वो दोनों स्क्रीन पे होंगी भी नहीं, फिर जेरल्डीन पे कैमरा, वो जब ठीक हो जाएगा मेरा, जितनी दफ़ा गलत होगा मैं दोबारा करूंगा, फिर जब वो ठीक हो जाएगा फिर जेरल्डीन पे जाएंगे, फिर उसके ऊपर कैमरा होगा, फिर वो ठीक करेगी, जब तक वो ठीक नहीं करती, जहाँ जहाँ गलती करती है वो रीटेक होगा, फिर कैमरा पूर्वी जोशी पे जाएगा और फिर पूर्वी जो हैं वो करेंगी, जब तक वो ठीक नहीं करती वो चीज़ मतलब कंफर्म नहीं होगी। अब ये तीन बंदे हैं तो एक ऐसा शॉट भी होगा जिसमें ये तो बताते हैं ना कि तीन बंदे टेबल पे बैठे हुए हैं, तो फिर एक और शॉट होगा उसको भी जब तक हम सही नहीं करेंगे, तीनों अपनी अपनी लाइन सही नहीं बोलेंगे, उसमें से भी एक शॉट लेंगे वो। तो इस तरह ये सारे, तो अगर वो एक दफ़ा इतना भी कर देते ना कि पहला कैमरा पूर्वी जोशी पे लगा देते और मैं और जेरल्डीन प्रैक्टिस कर लेते, फिर दूसरा उसी दफ़ा जेरल्डीन पे लगा देते या सेकंड पे मेरे पे भी आ जाता तो खैर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पता नहीं खान साहब क्या करेंगे, वो इतने बेचारे मेरे सेल्फ टेप से, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप इतने अच्छे सेल्फ टेप आपने किए, आप तो कमाल करेंगे, तो वो उन्होंने पहला ही कैमरा मेरे बूथे पर लगा दिया। तो अब जब उन्होंने मेरे लगाया तो मैं तो अर्थ हो गया। तो मैंने कहा ओ ये तो मेरे भी आगे, अच्छा अब मैं क्या करूं, हमने मेथड एक्टिंग की एक्टिंग सीखी हुई है, ठीक है, हर चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा इस तरह शायद बताता नहीं है कोई, या एक्सप्लेन नहीं करते, लोग कहते हैं जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब मैथड एक्टिंग में आपने रियल करना है चीज़ को, एक्टिंग नहीं करनी, बस ये एक्टिंग है कि आपका सीन हुआ, आपने एक्टिंग नहीं करनी। तो जब मैं बैठा सीन करने के लिए, तो अब मैं अगर अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, अपनी बेगम से बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में अगर आप ये बात करें तो आप क्या मियाँ बीवी से या बेटी से बात करते करते खाना छोड़ देते हैं, आप खाना खाते खाते बात करते हैं ना। तो उन्होंने खाना डाला, अब मैं साथ कांटा चम्मच भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं साथ खा भी रहा हूँ, वो साथ मैं पानी भी पी रहा हूँ, साथ में बातें भी कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, वो तो चले हो गए। उन्होंने कहा ये क्या भाई। तो उनको मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू मेक इट ओरिजिनल, कहते ओए होए, उन्होंने कहा डोंट वरी अबाउट दैट जस्ट से द लाइंस। तो मैंने कहा उन्होंने फिर मुझे नई प्लेट दी, फिर मेरे आगे खाना उन्होंने डाला, मैं क्या ओके इसमें क्या है, तो फिर मैंने लाइनें बोल दी और फर्स्ट सीन ही ओके हो गया। अब मुझे तसली ना हो एज एन आर्टिस्ट के भाई ये तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैंने सिर्फ लाइनें बोलनी, अभी तो मुझे एक्टिंग करनी। तो उन्होंने कहा एक्टिंग की जरूरत नहीं, एक्टिंग होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये तो फिर बहुत आसान है कि एक चीज़ को 15 दफ़ा बोलना है हमने और दूसरे लोगों के साथ रिएक्शन एक्शंस भी आपने करने हैं, तो ये तो फिर मैंने कहा चलें ये तो फिर हो जाएगा।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Days of Ashura on Inspire FM. Join us in fasting and reflection on Ashura, a day of peace and unity for Islam. Let's come together in prayer, charity and solidarity for all.

0: Emily is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: एंड now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
3: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
4: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head to head on the big sporting questions.
3: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
6: Fun and games! Competition and prizes!

ये बड़ी प्यारी मिसाल है और ये ज़रा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं ये बात आपके सामने वाज़ह तरीके से पेश कर सकूँ। ये हैं दो आयात, दोनों मदनी आयात हैं, एक आले इमरान से है और एक सूरह हदीद से है, और तकरीबन बात दोनों में एक ही हो रही है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, जल्दी करो एक मग़फ़िरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है, अपने रब से आने वाली मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। वजन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो। अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसका साइज आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आपको मालूम होगा आसमान कितने हैं? सात आसमान। सात नहीं कहा लेकिन समझ में आ जाती है बात, कहे बगैर सात आसमानों की बात हो रही है, जन्नत की वसत की बात हो रही है। ऐसी जन्नत की तरफ भागो जिसकी वसत कितनी है? सातों आसमान और ज़मीन के बराबर। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। ठीक है जी, ये है आले इमरान की आयत, मुख्तसर सा तर्जुमा। अब आते हैं हदीद में, तकरीबन वही बात लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। सारिउ से शुरू नहीं हो रही बात, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पर। क्या कहा अल्लाह ताला ने? साबिकू। सारिउ नहीं कहा, साबिकू कहा है। सबकत ले जाओ एक दूसरे से, एक दूसरे से रेस लगाओ, दौड़ लगाओ। पिछली दफा क्या कहा था? जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरे में कहा क्या कहा है? सबकत ले जाओ, दौड़ करो, दौड़ लगाओ। पहला फर्क, देखते हैं कोई और फर्क होंगे कि नहीं। इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, जैसे पहले था, किसकी तरफ दौड़ लगाओ? ऐसी माफी की तरफ, ऐसी मग़फ़िरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है। वह जन्नत, और ऐसी जन्नत की तरफ। अर्दुहा, जिसकी वसत, जिसका साइज। अर्द, इसकी वसत तकरीबन, अब मैं तर्जुमा गलत तर्जुमा पहले करूँगा, इसकी वसत तकरीबन आसमान और ज़मीन के जैसी है। आसमान और ज़मीन, पिछली दफ़ा क्या कहा था? सारे आसमानों और ज़मीन की बात थी ना। अब कहा है असमा। असमा वाहिद है या जमा है? जमा है। और एक और फ़र्क भी है, पहली दफ़ा कहा था इसका साइज सातों आसमान के बराबर है, लेकिन यहां कुछ अजीब बात कह दी, इसका साइज तकरीबन उसकी तरह है। किसकी तरह है? आसमान और जमीन के बराबर। अब बात अब समझ नहीं आ रही, अगर सात आसमान के बराबर है तो तकरीबन एक आसमान और जमीन के बराबर कैसे है? कुछ बात कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, आखिर में कहा था उइद्दत लिलमुत्तकीन, पहली दफा किसके लिए तैयार की गई है जन्नत? तकवे वालों के लिए। ठीक है, यहां कहा है उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, ख़ास इनाम है। फ़ज़ल कहते हैं जो इजाफी चीज़ होती है, जो आपने उजरत में कमाई नहीं हो उसके मजीद हो, ये मजीद एक एहसान है अल्लाह ताला की तरफ से, इसे फ़ज़ल कहते हैं। सो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है, जो जिसको चाहे वो दे। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, और मजीद देने वाला, मजीद ज़्यादा बरकत देने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, उसकी इस्तेआत रखने वाला तो वही अल्लाह ही है। वल्लाहु ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब शुरू से बात करते हैं दोबारा। आपको जॉब पर जाना है, आप थोड़ी देर से उठे सुबह को, आप रेस लगा रहे हो या जल्दी कर रहे हो? जल्दी कर रहे हो, आपको कोई फिक्र नहीं कोई और जल्दी उठा या नहीं उठा, आपको किसी और की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है, आप खुद मोटिवेटेड हो कि आपने क्लास पे पहले पहुंचना है। ठीक है, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जब उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना, उनको ये फिक्र नहीं होती और कोई क्या कर रहा है, और कोई सो रहा है, और कोई उठा हुआ है, और कोई जल्दी कर रहा है, और कोई आहिस्ता कर रहा है, मुझे जल्दी करनी है। उसको और किसी की, वो कोई किसी और को देख नहीं रहा होता, वो खुद ही से मोटिवेट हुआ होता है। और ऐसे लोग, उनकी उन सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि उनके सामने एक गोल होता है और वो उस गोल पे, उस हदफ पे वो इतने फोकस हो जाते हैं, इतने मुर्तकिज़ हो जाते हैं कि बाकी लोग उनको नज़र नहीं आते, उनको कोई कंपैरिजन नहीं करना होता एक दूसरे की, इस ये क्या कर रहा है, ये आके निकल गया, ये पीछे रह गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको, बस अपना गोल नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप दौड़ लगाने की बात करते हो तो दौड़ लगाने में कुछ लोग तो हैं जिनको बस गोल नज़र आ रहा है, लेकिन और लोग हैं जो कहते हैं यार ये तो आगे निकल गया, मुझे भी आगे निकलना चाहिए,
बाकी सारे तेज गाड़ी चला रहे हैं, मैं आहिस्ता चला रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी तेज करनी चाहिए, ठीक है ना। सारे उस दुकान पे जाके शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे भी वहां जाके करना चाहिए। सारी लाइनें इस रेस्टोरेंट पे लगी हुई हैं, वो रेस्टोरेंट खाली है, मुझे भी वहां जाके खाना चाहिए। यानी आप बाकियों को देख के आपने भी दौड़ में शिरकत कर ली, ठीक है। तो नफ्सियाती तौर पे एक शख्स है जो बाकियों को देख के थोड़ा इंस्पायर हो गया या उनको कॉपी कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपने तौर से उसने इनिशिएटिव लिया। तो कौन सी आयत में अपनी तौर से इनिशिएटिव ज्यादा है? पहली आयत, क्योंकि वो खुद से क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा है, खुद से जल्दी कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात, आखिर की तरफ आते हैं, फिर दरमियान में आएंगे। आखिर में अल्लाह तआला ने कहा जिनसे जल्दी करने को कहा है वो कैसी, किसके लिए वो जन्नत बनाई है? मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन। अब मैं सवाल, मुश्किल सवाल है, क्या तमाम मुसलमान मुत्तकीन हैं? ना, यानी ये तमाम मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही, मुसलमानों के ग्रोह में से एक सबसेट जिसे कहते हैं ना, एक उसकी कम नस्बत है, उनके बारे में बात हो रही है। अब तादाद इन लोगों की कम हो गई, ठीक है। अब इससे अगली आयत में इन मुत्तकीन के बारे में कुछ मजीद बातें बताई जाएंगी, ये कैसे मुत्तकीन है। कहा अल-मुत्तकीन अल्लज़ीन युन्फिकूना फिस-सर्राई वद-दर्रा, ऐसे मुत्तकीन जो खुलेआम, जो आसानी के वक्त पे और मुश्किल के वक्त पे खर्च करते हैं। यानी सिर्फ मुत्तकीन ही नहीं है, खर्च करने के मामले में, सखावत के मामले में, आसानी हो या मुश्किल हो, वो हाथ पीछे नहीं रोकते। अब ये इनकी तादाद बढ़ गई या कम हो गई? और मजीद कम हुई ना। फिर कहा वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और ना सिर्फ खर्च करते हैं हर हाल में, अपने गुस्से को पी भी जाते हैं, अपने गुस्से को उगल जाते हैं। तादाद कम हो गई या ज्यादा हो गई?

करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करो आप मेरे साथ बैठ के ये लंच मेरे साथ खा लो आप। यानी आपने सिर्फ गुस्सा नहीं पिया, आपने मोहब्बत से माफ़ भी किया। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक मशहूर रिवायत है, कुछ कहते हैं हसन से मुतालिक है रदी अल्लाह अन्हु, कि उनका एक गुलाम था, वो उनको पानी दे रहा था तो उसने जग गिरा दिया उनके पाँव के ऊपर, पाँव जख्मी कर दिया। तो उसने ये आयत पढ़ ली, वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, गुस्से को पीने वाले, कुरान का हवाला है, कुरान बचाने के लिए है। तो उन्होंने कहा कसम तू ग़ैज़ी, मैंने गुस्सा पी लिया। फिर उन्होंने कहा अगली आयत का हिस्सा उन्होंने पढ़ा, गुलाम ने कहते हैं वल्आफ़ीना अन-नास, और लोगों को जो मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं। तो कहा चलो आफ़ा तुक, तुझे माफ़ भी कर दिया। अब आयत का आखिरी हिस्सा है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले, बेहतरीन करने वालों से मोहब्बत करता है, जा तू आज़ाद हो गया। तो वो तीन, अब मुत्तकीन से बात शुरू हुई थी, वो पहले ही सारे मुसलमान नहीं हैं। अब मुत्तकीन में से ऐसे जो हर सूरत हाल में खर्च करते हैं कम हो गए, फिर उसके बाद गुस्सा भी पीते हैं और कम हो गए, फिर लोगों को मोहब्बत से माफ़ भी करते हैं और भी कम हो गए, और हर वक्त एहसान का मुजाहरा करते हैं और भी कम हो गए। तो ये वाली जो जन्नत है ना, ये बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के लोगों की है, जो खुद ही से जल्दी करते हैं, उनके अंदर खुद ही कोई आग लगी हुई है जिसको उनको ड्राइव करती है। ये खास लोगों के बारे में बात कही जा रही है, या आम के बारे में, आवाम के बारे में ये बात नहीं है, खवास के बारे में बात है। ठीक है, अभी आसमानों के बारे में आखिर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा तकाबुल कर लें दूसरी तरफ। शुरू में कहा था साबिकू, अब दूसरी आयत में दौड़ लगाओ, दौड़ लगाने वाले दूसरे को देख के करते हैं कि खुद से करते हैं, दूसरे को देख के करते हैं। तो ये इंसानियत की अक्सरियत नहीं है, उसने ये डिग्री की मैं भी यही कर लूं, उसने ऐसे कपड़े पहने मैं भी यही पहन लूं। यानी यही तो हमारी एक टेंडेंसी है कॉपी करने की, जिससे इतनी सारी मार्केटिंग चलती है, इतनी सारी एडवर्टाइजिंग चलती है। हम दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, दूसरे को देख के हम कहते हैं हम भी ये करना चाहते हैं। कितने करोड़ों लाखों अरबों बच्चे दुनिया में होंगे जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल खरीदने गए होंगे, यू नो, कितनी खिड़कियां टूटी होंगी दुनिया में, राइट? क्योंकि हम देख के हम भी, अब हमारे भी ख्वाब आ गए। ऐसा ही होता है ना, साबिकु इला जन्नत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दि समाई वल अर्द। पर यहां कहा किसके लिए जन्नत, ये वाली जन्नत मुत्तकीन के लिए नहीं, कहा इन उन सब के लिए जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ये कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं? इसमें तो मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। और ये भी नहीं कहा जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, कहा अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। तो इसमें हम तो वैसे भी तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं, लेकिन यहां पर बात उन लोगों की भी हो गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा पर ईमान लाए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से आदम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, तमाम रसूल जिनके बारे में अल्लाह ने हमें बताया, वमिनहुम मन लम नक़्सुसहुम अलैक, और उनमें से ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया, उन सब को शामिल कर दिया। तो दूसरी आयत में कम लोगों की बात हो रही है या ज़्यादा की? शुरू से साबिकों के लफ्ज़ में ज़्यादा की तरफ इशारा, और आखिर में जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर और उसके तमाम रसूलों पर। अच्छा, उनमें मजीद कोई कैद डाली कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको अपना गुस्सा भी पीना होगा, तकवा भी दिखाना होगा, और नमाजें भी कायम करनी होंगी, और कोई मजीद यहाँ पे शर्तें डाली हैं कि नहीं? नहीं डाली। तो मालूम ऐसा होता है कि जो दूसरी जन्नत है ना, इसका दरवाज़ा कुछ ज़्यादा कुशादा खुला हुआ है, लग रहा है ना? अब इसका जो दरवाज़ा कुशादा खुला हुआ है, अब आसमान की तरफ आते हैं, फिर इन आयात को समझेंगे। पहली आयत में कितने आसमानों का जिक्र था? सात आसमान। आसान सा सवाल है, सात आसमान ज्यादा बड़े हैं या एक? गलत, एक बड़ा है। अब समझाता हूं क्यों। अरबी में असमा का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आसमान उसका तर्जुमा सही नहीं है। असमा जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं हर वो चीज जो ऊपर है। ऊपर के लिए लफ्ज़ क्या होगा? असमा। जब आपने सात आसमान कहा तो ऊपर में से सिर्फ सात आसमान की बात हो रही है, लेकिन ऊपर जो कुछ भी है उसको हम क्या कहेंगे? असमा।
अच्छा उसमें

0: ऐड डालनी हो, उनमें से किसी एक आसमान की बात करनी हो, हम कहेंगे असमा दुनिया, सबसे नीचे वाला आसमान, यानी उसमें कोई मजीद इजाफा करना पड़ेगा। असमा अस्साबिया, सातवां आसमान। असमा अस्थानिया, दूसरा आसमान। असमा अस्थालिथा, तीसरा आसमान। लेकिन अगर आप कहें सिर्फ असमा, तो इससे क्या मुराद है? जो कुछ भी ऊपर है। अब ये अल्फाज, जो कुछ भी ऊपर है, सब कुछ जो ऊपर है, वो ज्यादा वसत रखता है या सात आसमान ज्यादा वसत रखते हैं? जो कुछ भी, यानी नीचे वाली आयत में, हदीद वाली आयत में, इतनी हर लफ्ज में ज्यादा से ज्यादा वसत है कि नहीं? और इसीलिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें तो फिर अल्लाह ताला के अर्श के बारे में भी बात हो गई, तो उसको तो आप इक्वेशन नहीं बना सकते, उसको बराबर नहीं कर सकते जन्नत के, क्योंकि उसके मुकाबले में तो जन्नत भी कुछ नहीं है। तो क्या किया? का अर्ज़ समा, उसकी तरह से कुछ, अगर तुम समझ लो, बराबर नहीं। का अर्ज़ समा वल अर्ज़। अच्छा, यहां पर फिर ये सवाल पैदा होता है कि इन दोनों आयात में से अल्लाह ताला की रहमत इंसानियत पर ज्यादा किस में है? निचली वाली में है ना। तो देखें, निचली वाली में एक कलाम का इजाफा है जो पहली आयत में नहीं है। कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की तरफ से ज़्यादा है, जो जिसको चाहे देता है, अल्लाह ही है ज़्यादा देने वाला। सुभान अल्लाह। एक तो बात हो, मैंने एक स्क्रीन पर यह आयत और ये आयत एक दूसरे के नीचे रख दी कि हम तकाबुल कर सकें, लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ था तो ये एक आयत दूसरी आयत के साथ नाजिल हुई थी क्या? एक आयत एक किसी साल में, एक आयत किसी और साल में, एक आयत जब सहाबी किरात कर रहे हैं तो वो सूरह आले इमरान की किरात कर रहे हैं, उसमें वो आयत आ रही है, एक सूरह हदीद की किरात कर रहे हैं तो उसमें वो आयत आ रही है। जहन में तो आएगा इस तरह की एक आयत याद आती है, लेकिन हम तो, मैं तो यहां पर स्क्रीन पे दिखा के एक एक लफ्ज को कंपेयर करके, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो पढ़ना आता है, हमें अल्फाज देखने आते हैं, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसको लाल कर दिया, उसको काला रख दिया, ये मैं कर सकता हूं। वो लोग करते थे ये चीजें, उनके लिए कुरान तो सुनी हुई चीज थी ना, लिखी हुई चीज थोड़ी थी, लिखी सुनी हुई चीज थी। इस किस्म की बारीक दिक्कत, इतना नाजुक कलाम कि एक एक चीज का, एक एक लफ्ज का लिहाज रखा गया हो, वो भी ऐसे कलाम में जो लिखा हुआ नहीं पेश किया गया, बोला हुआ पेश किया गया, इंसान की सलाहियत से कितना दूर है, कितना दूर है। थोड़ा सा भी तदब्बुर अल्लाह ताला के कलाम पर इंसान कर लेना, उसको ये बात वाजे हो जाए, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, चुनने के लिए दो लफ्ज। सूरतुल हज के आखिर में अल्लाह ताला ने चुनने के लिए, अरबी में चुनने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इख्तियार करना, इख्तारा या इख्तारो, इख्तियार, इख्तियार करना भी अरबी का लफ्ज है। इस्तफा, उसको भी चुनना कहते हैं। इज्तबा, उसको भी चुनना कहते हैं। अरबी में ये तीनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह ताला की जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी ना पहाड़ी पर, तूर पर, तो उन्होंने उनसे कहा था अनख्तरतुका, मैंने आपको चुन लिया, मैंने आपको चुन लिया। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? इख्तियार। इख्तियार, इख्तियार से मुराद है ऐसी चीज चुनना जिसमें खैर हो। इख्तियार खैर से निकला है, खैर के माने हम सब जानते हैं। इख्तियार क्या है? ऐसी चीज को चुनना जिसमें खैर हो। इस लफ्ज का इस्तेमाल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्यों किया गया? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक गिल्ट था कि मैंने कत्ल किया है, तो मैं तो पता नहीं अल्लाह ने माफ किया या ना किया। हो सकता है उनके दिल में कुछ गुमान रह गया हो, या फिर भी वो समझते हो कि अब मैं ठीक है, किसी ने यहाँ पर भी ऑडियंस में सवाल पूछा था, ठीक है हर अल्लाह ताला अस्साबिकून अस्साबिकून की बात करते हैं, लेकिन जिसने पीछे को गलती की हो वो तो पीछे रह गया ना, अब वो जितना भी अच्छा करे लेकिन उसके खाते में कुछ नेगेटिव तो है ना, तो वो बाकियों के साथ तरह आगे तो नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने पहली तसल्ली किसी और बात करने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी है? आपके अंदर जो खैर है उसकी बुनियाद पर मैंने आपको चुना है, वह अनख्तरतुका। लेकिन हम जो यहां पर तकाबुल करेंगे वो सूरतुल हज की आखिरी आयात के बारे में है। वहां पर अल्लाह ताला ने इख्तियार के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए एक ही रुकू के अंदर, दो मुख्तलिफ अल्फाज, और ये अरबी का कायदा है, इज़ा इज्तमा तफर्रका, अगर दो एक जैसे मायने के लफ्ज एक साथ आ जाए ना, तो मकसद ये होता है कि उन दोनों का फर्क वाजे करना होता है, उसके फर्क की तमीज़ करनी होती है। जैसे हम कहते हैं मुसलमान है या अहले ईमान है, एक ही बात है,
1: लेकिन अगर मोमिन और मुस्लिम को एक ही जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन दोनों में कोई फर्क है। तो इस फर्क को समझते हैं। अल्लाह ताला अपने रसूलों के बारे में कहता है अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने रसूल चुनता है, फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने रसूल चुनता है। चुनने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? यस्तफी। यस्तफी इसी से हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लफ्ज, एक लकब इस्तेमाल करते हैं, मुहम्मद अल मुस्तफा। मुहम्मद अल मुस्तफा उसी से निकला, इस्तफा से। इसका इस तो ये लफ्ज़ हुआ अल्लाह ताला ने जब रसूलों का की सिलेक्शन की, उनको चुना, उनका इख्तियार किया, फरिश्तों में से भी जैसे जिब्रील का इख्तियार किया गया है अलैहिस्सलाम, और जिस तरह रसूलों में से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे जाकर इन्हीं आयात में अल्लाह ताला ने हमारे बारे में बात की, मुसलमानों के बारे में। कहते हैं वज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम सबको चुना है। लेकिन वहां जब चुनने की बात की तो यह नहीं कहा हुवस्तफाकुम, कहा हुवज्तबाकुम। वो इज्तिबा का लफ्ज है, हम वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इस्तेमाल करते हैं, मुहम्मद अलमुज्तबा, अलमुस्तफा वलमुज्तबा, है ना। लेकिन मुज्तबा का लफ्ज असल में कुरान में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? हमारे लिए। हम असल में मुज्तबा हैं, हम मुज्तबाउन हैं असल अरबी के एतबार से, हमें चुना गया है। तो चुनने के लिए दो लफ्ज। अच्छा, अब इनको जल्दी से समझते हैं। मैं सब मिसाल के तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। आप में से किसी को चॉकलेट पसंद है? ओके, कौन सी चॉकलेट पसंद है? स्निकर्स, माय काइंड ऑफ पीपल। एनीबडी एल्स? किटकैट? किटकैट, स्निकर्स। कोई ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, कुछ और नहीं है? मार्स? यार क्या यार, टॉब्लरोन, लिंट, लिंट, रोशेर्स, बाउंटी। ओके, बाउंटी इज पेपर इन इट, नो। ओके, आप दुकान पे जाते हो, आप अपनी बीवी के साथ दुकान पे गए, आपका दिल चाहता चॉकलेट खरीदने का, तो आपने स्निकर्स उठा ली। आपकी बीवी आपसे पूछती है आपने स्निकर्स क्यों ली, किटकैट क्यों नहीं ली, ट्विक्स क्यों नहीं ली, टॉब्लरोन क्यों नहीं ली, थू क्यों नहीं ली, आपसे पूछ रही आपने स्निकर्स क्यों ली, बताएं मुझे क्यों ली, तो आप कहें फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक मुझे स्निकर्स पसंद है। आपने चुना है ना उसको, स्निकर्स का इख्तियार किया है। क्यों किया है, किस वजह से किया है? सोशल फैक्टर्स हैं उसके, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसकी? पसंद है मेरी, बस पसंद है, या वो सस्ती है? वो कह रहे हैं सस्ती है। अगर आप आगे आप एक और स्टोर पे गए, अब मैं इकोनॉमी की बात निकालता हूँ, एक ही कीमत की सारी कमीजें लगी हुई हैं, एक ही स्टाइल की हैं, एक ही सिलाई की हैं, और आपने नीली वाली चुन ली। आपकी बीवी आपसे कहती है आपने नीली वाली क्यों चुनी, सब्ज वाली क्यों नहीं चुनी, सफ़ेद वाली क्यों नहीं चुनी, पीली वाली क्यों चुनी, आपने नीली वाली क्यों चुनी, तो आप कहो माफ़ करो मुझे लेने दो यार, क्योंकि आपने किस बुनियाद पर चुनी है? पसंद है, मेरी पसंद है, मेरी पसंद है। कुछ कुछ इख्तियार ऐसा होता है जिसमें आपकी पसंद होती है, बस मेरी मर्जी, मैं जो खाऊं, मैं जो ऑर्डर करूं, ये क्यों ऑर्डर किया, ये क्यों खा रहे हो, ये क्यों पहना हो, क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है। ऐसी मर्जी को कहते हैं इस्तीफा। इस्तीफा निकला है सफवा से। सफवा कहते हैं खालिस चीज को। इससे उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं साफ, साफ शफाफ जो हम कहते हैं ना, ये असल में सफा से है, अरबी की अरबी का लफ्ज है, और इसका नाम, इसका इस लफ्ज का मायना है पाकीजा और पाक। ऐसा इख्तियार जो पाक और खालिस किसका है? मेरा है। इसमें किसी का बाहर से अमल दखल नहीं है, उसे कहते हैं इस्तफा। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूं। आप में से कौन है जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं? अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रिस्क में इजाफा करे। फर्ज करें कि आपकी जॉब है, आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी जॉब है आपने इंटरव्यू लेना है, अकाउंटेंट की जॉब खुली है, 5-6 लोग आए हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, और आपने इंटरव्यू लेना है जी, ठीक है। पहला आया, उसने इंटरव्यू दिया, फारिग किया उसे, दूसरा आया, یہ ہم رابطہ کریں گے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر آپ کا باس آ کے آپ سے کہتا ہے تو کیا خیال ہے کس کینڈیڈیٹ کو لیں؟ تو آپ کہیں وہ تیسرا والا صحیح تھا، تو پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس نے بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کی جیب میں سنیکرز تھی. اگر آپ نے اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنا ہے کس بنیاد پہ، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس نے اگر آپ نے اس کو کوئی کمپیٹنسی ٹیسٹ دیا ہے، کوئی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی ہے، ساری چیزیں دیکھ کے ہی آپ نے ہائر کرنا ہے نا، اس میں استعفیٰ تو نہیں چلے گا نا. کبھی کبھی ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے جس سے اختیار کا یعنی آپ کی اپنی چوائس کا تعلق نہیں ہوتا، امتیاز کا تعلق ہوتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹس پک کیے جاتے ہیں امتیاز کی بنیاد، خصوصیات ہوتی ہیں، کوئی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، ایسی سلیکشن کو کہا جاتا ہے اجتباء. جبو سے نکلا ہے، جبو کہتے ہیں عربی میں ٹیکس کلیکشن کو، اصل میں خراج جو کلیکٹ کیا جاتا ہے نا، وہ ہر ایک سے نہیں کیا جاتا جس کے پاس کوالیفائڈ انکم ہوتی ہے، اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اس سے اخذ کیا جائے، وہ پھر مجتبا ہو جاتا ہے تو اور اسے جبو لیا جاتا ہے. تو بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لفظ ہے، کوئی بھی آپ مرضی کا چنیں اس کے لیے استعفیٰ، اور جب کسی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر آپ چنیں، خاص مقصد کے لیے چنیں، ایک سارے فیکٹرز دیکھ کے آپ چنیں، اس کو کہا جائے گا اجتباء. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی، بہت ہی زیادہ بری، مجھے پتا تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے، پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا، جیسے ہی شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا،
2: کیا
1: والیوم ایک دم سے گر گیا، وہ چپ ہوگی، روتی ہوئی کمرے میں چلے گی، یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی، کوئی اور غصے میں بات کی، اور وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے، دیکھو.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Allah, Allah. Days of Ashura on Inspire 105.1 FM. Allah, Allah. Give charity generously. Supporting the needy, feed the hungry, and help those oppressed. Acts of kindness and charity during Ashura can carry immense rewards. And remember, the Ummah is one body.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
8: Assalamu alaikum. Bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man raghiba an sunnati falaysa minni. That whoever abandons my sunnah is not from me.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237474 core.org.uk।
11: बचपन से सुनते आए हैं, ये नहीं कहना, वो नहीं करना, सवाल नहीं पूछना, और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं, हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं, और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से, तो बात कीजिए, क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर FM।
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
13: Last time on Akhri Mojza.
0: अच्छा, फिर उनसे तो कहा था सहरा में बच्चे को छोड़ आओ, उनसे तो कहा था आग में कूद जाओ, उनसे तो कहा था बच्चे को ज़िबा करो, मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे अल्लाह, मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे, क्या मुतालबा होगा मुझसे। फिर उनका तो हवाला दे दिया, कहा फ़ाक़ीमु الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, नमाज कायम रखना, नमाज कायम कर दो, ज़कात दो, और अल्लाह को थामे रखो। हुआ मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमल, वो तुम्हारा मौला है। आसानी की है कि मुश्किल की है? अल्लाह, इन दो अल्फाज में इस्तीफा और इज्तिबा, दोनों का इस्तेमाल, मुख्तसर सा इस्तेमाल, लेकिन इंसान थोड़ा सा भी कुछ आयात पर गौर कर लेना, उसकी सारी दुनिया बदल जाती है, सारा उसका नुक्ता नज़र बदल जाता है।

सूरज की किरणों से चमके सारा जहां, इंस्पायर एफएम की लहरों से महके सारा समा। रहे आपके साथ यहां और वहां, शेयर रेडियो इंस्पायर।